0: This is Fresh FM, the station that lets you make the content. It's 10 o'clock.
1: Welcome to the Women's World with Vinita Chandra on Fresh FM. Join me as I explore the diverse experiences of women worldwide. Tune in for inspiration, insight, and the celebration of womanhood. This is Women's World, your voice, your platform, your stories. Tune in with Vinita Chandra for Women's World on Saturday night at 7 p.m. on Fresh FM. नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेंस वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।